0: summer can be full on. Pool days, fishing trips, barbecues, and every adventure in between. That's exactly why coming home just hits different. The fun's still on with Sastel Infinite 300 and Whole Home Wi-Fi. Sign up today and get corner-to-corner coverage for as low as $70 a month. Visit sastel.com/summer to get started. Conditions apply.
1: Ever tune in late and wonder what you missed? Or catch part of a show and wish you could hear it again? Don't sweat it. The digital archive at cfcr.ca has you covered. Relive your favorite moments, revisit captivating conversations, and enjoy the shows you love whenever it suits you. Whether it's last night's deep dive or that interview everyone's buzzing about, it's all just a click away. The digital archive at cfcr.ca. Because life doesn't always work around your schedule, but now it doesn't have to.
2: Hello, good morning, namaste, Saskatoon. संगीतमाला में आप सबका स्वागत है. जी हाँ, संगीतमाला एवरी सैटरडे आप सुनते हैं CFCR 90.5 FM पर मेरे यानी नीपा के साथ. और आज आप सबके हालचाल कैसे हैं? मौसम के ऊपर हमारा बहुत ही झुकाव होता है कि अगर मौसम अच्छा होता है तो हमारा मूड सब कुछ अच्छा हो जाता है. और देखिए, सैटरडे का दिन है और काफ़ी सारे काम होते हैं, वीकेंड होता है और हमें भी काफ़ी काम होते हैं, लेकिन हम आ जाते हैं हमेशा से आप ही के लिए, आपके मनोरंजन के लिए संगीतमाला लेकर. तो क्योंकि हमने जो वादा किया है वो तो हमें पूरा करना ही होता है ना.

जी हाँ, हम जो हमेशा से वादा करते हैं उसे पूरा करने के लिए हम कुछ भी हो जाए, मैं यानी नीपा या मनीष जी या हमारे विनीत जी, हम आपके लिए आ ही जाते हैं। ये ऐसी बात तो नहीं कि सिर्फ आपको ही हमें आपको एंटरटेन करना होता है, हमें भी आप लोगों से वार्तालाप करनी होती है, आपसे मिलना होता है, आप जो हमें फरमाइश भेजते हैं वो हमें सबको सुनानी होती है। तो आज भी हम ऐसा ही करते हैं। सबसे पहले मैं हमारे स्टूडियो का नंबर आपको बता दूं। हमारे स्टूडियो का नंबर है 3062425002, और आपको आपका मैसेज अपनों तक पहुंचाना हो तो आप हमारा जरिया ले सकते हैं, और हमें स्टूडियो में तुरंत कॉल करके आप कोई भी गाना सुनना चाहते हो, आपका कोई मैसेज किसी को गाने के जरिए सुनाना चाहते हो, बर्थडे विशेष की आपको बधाई देनी हो, बर्थडे विशेष करना हो, एनिवर्सरी की आपको बधाई देनी हो अपने लव्ड वन को, तो आप स्टूडियो में कॉल कीजिए और आपके लव्ड वन का नाम बताइए, आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं वो भी हमें बताइए, ताकि हम अच्छे से सबको वो गाने सुनाए और आपका जो मैसेज है आपके अपनों तक पहुंचा सके। तो ये तो हमने कहा कि ये जो हम आपके लिए प्रोग्राम लेकर आते हैं, तो ये जो ICCA है उसी की बदौलत हम आपसे जुड़ सकते हैं। ये एक बहुत पुराना संगठन है और वो हमारी इंडियन कम्युनिटी के लिए बहुत सारी सर्विसेज लोग दे रहे हैं, और आपको पता ही होगा आज और कल दो दिन जिनको भी वीज़ा का प्रॉब्लम हो या OCI से कोई भी मामला आपको रिन्यू करना हो या कुछ भी हो, तो उसके लिए आज गीता भवन में जो काउंसलर जनरल आ रहे हैं तो वो कैंप में आप शायद पहुंच भी गए होंगे, और कल भी दोपहर तक वो कैंप रहने वाला है। तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और जो भी आपको क्वेरीज है वो लेकर आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। और पता है ये कब से हम लोग ये एडवर्टाइज़ कर रहे थे कि इन लोग आने वाले हैं, तो इतनी बड़ी तादाद में सबको OCI का और पासपोर्ट रिन्यूअल का और जो भी जो प्रॉब्लम्स थे या जो भी उनको करना रिन्यू करना होता है, तो उन लोग ने ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दिए थे, तो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आई हुई हैं, और मैं आशा रखती हूँ कि सबका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपको रिन्यूअल करना है या सरेंडर करना है, वो सब आपका ये दो दिन में हो जाए, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस आई हैं। तो देखिए, हमेशा से होप रखनी है, और आई एम जस्ट क्रॉसिंग माई फिंगर्स के जितनों को ये कुछ OCI से जुड़ा हुआ काम था है वो आपका अच्छे से हो जाए। तो आज जिनका भी बर्थडे हो उनको हम सबसे पहले बर्थडे विश करते हैं। और हमारे बॉलीवुड में भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, और आज हमारी एक बहुत ही बेहद खूबसूरत, जिसे हम सिर्फ इंडिया का ही बड़ा फिगर नहीं कह सकते, वो वर्ल्ड वाइड बड़ी फिगर है, उनका बर्थडे है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए और मुझे कहिए कि आपको क्या लग रहा है कि आज किसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सुनिए ये गाना।

तिनका तिनका ज़रा ज़रा, तो ये गाना आपने सुना और आपको अंदाज़ा आ ही गया है कि हम आज कौन सी बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत, बेहद टैलेंटेड प्रियंका चोपड़ा के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। तो उनकी लाइफ भी बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से गुजरी हुई है। उनका जन्म तो हुआ था जमशेदपुर में, और उनके मम्मी पापा दोनों आर्मी में डॉक्टर हुआ करते थे, और बच्चों की जो हम परवरिश कहते हैं वो हमेशा पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से उनको एनकरेज करते हैं। तो प्रियंका चोपड़ा को बहुत ही अच्छे से उनके माता पिता ने रेस किया है, और उनका जो कॉन्फिडेंस आज हम जो देख रहे हैं वो उन्हीं का एक एग्जाम्पल है कि प्रियंका चोपड़ा को बचपन से ही उनके पेरेंट्स ने इतना एनकरेज किया था कि जब वो छोटी थी तो वो 13 साल की उम्र में ही US चली आई थी स्टडी के लिए, और वहाँ पर स्टडी करने के बाद वो 3 साल के बाद वापस से इंडिया पहुँच गई थी, और वहाँ पे उन्होंने अपना बाकी का ग्रेजुएशन था, जो भी पढ़ाई थी वो ख़त्म की थी, और सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने एक पेजेंट में पार्टिसिपेट किया था, और ब्यूटी पेजेंट था, और मिस वर्ल्ड तब बनी थी लारा दत्ता, ना मिस वर्ल्ड बनी थी हमारी ये प्रियंका चोपड़ा, और तब से उन्होंने आज तक पीछे देखकर नहीं देखा है। तो उनमें इतनी सारी टैलेंट हैं, और वो खुद अपना रास्ता बनाना चाहती हैं, उसे फॉलो करती हैं, वो फॉलोअर से ज़्यादा वो खुद एक नई मंजिल तय करना पसंद करती हैं, कि वो अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ही लेती है। और देखिए, ये जो उनमें कॉन्फिडेंस है वो आज हम देख पा रहे हैं कि वो विदेश में रहकर भी, US में आने के बाद में उन्होंने जो हॉलीवुड में भी उन्होंने अपना स्थान जमाया है। तो ये हम बात कर रहे हैं प्रियंका चोपड़ा के बारे में, और हम उन्हीं के बारे में काफ़ी सारी बातें करेंगे, और साथ में मैं आपसे बातें करूंगी और उनके गाने भी सुनाऊंगी। तो चलिए सुनते हैं ये गाना।

देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं और शुरू शुरू के जो उनकी फिल्में आई थी वो कुछ खास चली नहीं थी, लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस था वो सबने नोटिस तो किया ही था। बड़ी छोटी उम्र में वो फिल्म लाइन में आ गई थी और उनके लिए कितनी बड़ी बात होगी कि उनके फैमिली में कोई भी फिल्मों से उनका कोई नाता जाता नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अपने बलबूते पर आगे लेकर गई थी और उनको उनकी मम्मी डैडी का बहुत सारा साथ था। और जहाँ पे भी प्रियंका चोपड़ा जाती थी वो अपनी हमेशा मम्मी को साथ में रखती थी ऑफकोर्स। और बच्चों के लिए ही हम पेरेंट्स जिंदा रहते हैं, उनकी जो ख्वाहिशें होती हैं वो हमें लगता है कि हम उनको सपोर्ट करेंगे तो वो उनकी आसानी से वो लाइफ इजी हो जाएगी। और उनको हमेशा किसी का भी अगर साथ होना तो आपका जो करियर है और आप जो भी सक्सेस हासिल करते हो वो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती होती है। अकेले सफ़र में जो आपको तकलीफ़ें होती है अगर किसी का साथ हो तो आप वो सफ़र को बहुत ही अच्छे से आसानी से एंजॉय कर सकते हैं।

0: देखिए, अभी हम सब इंडिया में रहकर काफ़ी तरक्की कर लेते हैं, और ये जो अपनी बरेली से आई हुई चुलबुली सी प्रियंका चोपड़ा जो है, उन्होंने छोटा सा एक मे क्वीन का एक कॉन्टेस्ट था, वो जीता था, और उसके बाद में उनको काफ़ी सारी लोगों ने नोटिस किया था, और फिर मैंने जैसे कहा कि उनको फेमिना मिस इंडिया के लिए उनको भी सिलेक्ट किया गया था, और वो उसमें सेकंड पोजीशन पे आई थी, और उनकी जो जर्नी तब से शुरू हुई है, उनको बाद में कॉलेज भी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन आपको तो पता ही है, एक बार आप इतने बड़े पोस्ट पर आ जाती हो, बड़े से चमकने वाले सितारे बन जाते हो, तो फिर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से और मॉडलिंग के काफ़ी सारे ऑफर्स आने लगे, और उनको फिल्मों की भी ऑफ़र आने लगी थी, तो उन्होंने फिर कॉलेज को छोड़ दिया था, क्योंकि वो अपना स्टडी नहीं कंप्लीट कर पाई थी, और उन्होंने अपनी पहली फिल्म जो डेब्यू की थी, वो पहली उनकी फिल्म थी, वो तमिल फिल्म थी, और उसमें उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की थी। लेकिन उनकी जो पहली फिल्म हम बोल सकते हैं, वो फिल्म आई थी 2003 में, और फिल्म का नाम था द हीरो। तो वो फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड के बड़े स्क्रीन पर उनका डेब्यू किया था। तो हम बातें करेंगे प्रियंका चोपड़ा की, उनकी लाइफ की, और जो भी उन्होंने जो हासिल की है, इतनी मेहनत से शोहरत पाई है, तो उसके बारे में हम आगे भी बात करते हैं। लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: This summer, there's even more to discover at the Saskatoon X. Meet the Super Dogs in the Co-op Family Fun Zone, then cool off with incredible magic, comedy, and live entertainment inside the air-conditioned Summer Fair building. Explore hands-on fun at the brand new Sask Milk Egg Pavilion and sing along with Midway Melodies, a group karaoke experience. It's more than a day at the X. It's a full day of family memories, all included with your admission. One ticket, endless memories. Buy your advanced general admission tickets today at saskatoonx.com.
2: Birkenstock sandals, blunt stone boots, don't have socks, covers the feet on the day or night commutes.
3: We've got an incredible selection of Birkenstocks, with more coming in all the time. With different styles, colors, patterns, and materials, there's something for everyone. Get ready for the beach, pool, or boat with Birkenstocks waterproof EVA sandals. Stop by the shop today to check out our stock.
2: Now all the ladies and the gentlemen, they all ask how and where. The Broadway Shoe Repair. The Broadway Shoe Repair.
4: Looking for the most sophisticated secret in town? The venue at McLean Block is waiting. Nestled in Saskatoon's historic downtown core, the venue's heritage space offers 3,000 square feet of timeless luxury for your event. Whether it's an intimate wedding or a cocktail soiree, mix old school glamour and cutting edge style in our sleek lounge and private mezzanine, and dance the night away on our legendary horsehair sprung floors. The venue at McLean Block, 265 3rd Avenue South, where memories are made. Start your story today at mcleanblock.com.
5: Find your ideal property in Saskatoon with Shukla Realty. Shalini and Shekhar Shukla with REMAX Saskatoon provide seamless real estate solutions for effortless property sales. Whether you're looking for a single-family home or a luxury estate, a condo or a townhouse, a commercial space or an investment opportunity, our curated selection of properties will meet your needs. From teaching college students to becoming real estate experts, Shukla Realty is the name you can trust, guaranteed. Visit shuklarealty.com, that's S-H-U-K-L-A, or call 306-891-5580 for a free consultation today.
6: Do you own a business in Saskatoon? Do you enjoy this program on CFCR? Now we come to the big question. Do you think other people who enjoy this program might be interested in your business? If you provide a good or service that would appeal to Saskatoon's multicultural audience, you should be advertising in this very spot. Call 664-6678 Monday through Friday during business hours for more details on how you can advertise on Saskatoon's community radio station, CFCR 90.5 FM.
0: वेलकम बैक टू संगीत माला, जो आप सुन रहे हैं CFCR 90.5 FM पर मेरे यानी नीपा के साथ। और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं प्रियंका चोपड़ा की। और जैसे मैंने कहा, आपको कोई भी गाना सुनना हो या किसी के लिए गाना प्ले करवाना हो तो आप हमारे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर है 306-242-5002। और आज काफ़ी नए लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है, आज हमारा संगीतमाला वो सुन रहे हैं, तो उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। देखिए, काफ़ी लोग होते हैं जिनको पता भी नहीं होता कि यहाँ पर रेडियो स्टेशन पे हमारे बॉलीवुड का एक ख़ास प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है संगीतमाला और जिसके प्राइम स्पॉन्सर है ICCA। जी हाँ, उन्हीं की बदौलत हम एवरी सैटरडे आपसे वार्तालाप करने आ जाते हैं, आपकी फरमाइश के गाने आपको सुनाने आ जाते हैं। और हमें भी अच्छा लगता है जब हम आपके लिए गाने प्ले करते हैं, क्योंकि हमें म्यूज़िक में बहुत दिलचस्पी है। कोई भी किस्म का म्यूज़िक हो तो मैं वो सुन लेती हूँ। और यहाँ पर मुझे आपको एक बात बतानी है कि लास्ट सैटरडे मैं हम लोग बड़े ग्रुप में सब लोग कैंपिंग गए थे साइप्रस हिल, और वहाँ पे ट्रेल पे चलना होता है। हालांकि मैं चलने वालों में से नहीं हूँ, मुझे चलना इतना पसंद नहीं है, लेकिन फिर डिसाइड किया कि भाई सब लोग चल के जा रहे थे, कोई एक्सप्लोर कर रहे थे ट्रेल, तो मैंने कहा मैं कोशिश करूँगी, अगर मेरे से चला जाएगा तो ठीक है, वरना मैं पीछे हट जाऊँगी। लेकिन हमारे ग्रुप में एक हमारे फ्रेंड थे, उन्होंने ऐसे ही अपने मन की मतलब अपनी ही इच्छा से उन्होंने गाने चला लिए, जो भी बॉलीवुड के गाने थे। तो बस मुझे गाने सुनते सुनते उनके पीछे पीछे पूरे ग्रुप के साथ मैं भी कहाँ तक पहुँच गई मुझे पता नहीं चला। और जब हम लोग सब रुके और म्यूज़िक जैसे ही ख़त्म हुआ, मैंने कहा बापर बहुत आगे आ गए, तो सब लोग को प्यास लगी थी, मेरे पास बॉटल भी नहीं थी, लेकिन देखिए म्यूज़िक के पीछे मैं इतनी दीवानी हूँ कि म्यूज़िक के सहारे मैं कितना चलने को कहा मैंने सब चल लिया था। तो ये मुझे पसंद है म्यूज़िक सुनना, और म्यूज़िक एक ऐसी थेरेपी है कि आप सब कुछ भूल जाते हो। और आज प्रियंका चोपड़ा के बारे में बात कर रहे हैं, और प्रियंका चोपड़ा के जो सारे गाने हैं वो इतने राप्चिक हैं कि आप वो चेयर पर बैठ ही नहीं सकते हो। उनके गाने इतने मज़ेदार है, झुमा देते हैं हम सबको। तो ये जो गाना है वो मुझे लगता है कोई भी फैमिली फंक्शन होता है उसमें ये गाना तो चलता ही चलता है। तो चलिए सुनते हैं धमाकेदार ये गाना।

आप भी जुमने लगे ना, मैं भी यहाँ पर जुमने लगी थी, लेकिन वही मैं बोल रही हूँ कि प्रियंका चोपड़ा को देख कर ऐसे ही सब गाने हमें दिमाग में आते हैं और उनको मिले भी ऐसे ही सारे गाने हैं। और शुरू शुरू में भी उन्होंने जब बड़ी नई नई फिल्में की थी तो उनको एक्टिंग करने का कोई स्कोप नहीं था, लेकिन उनको हमेशा से अपनी टैलेंट दिखाना था। देखिए, हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई नया आर्टिस्ट जब आता है, नया नई लड़की होती है या कोई भी नया हीरो होता है, उनसे हम पहली फिल्म में तो इतनी उम्मीद नहीं रख सकते कि भाई बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। उनको भी सीखने में वक्त लगता है, राइट? कि कोई भी चीज़ आप पहली दफ़ा करते हो तो उसमें फ़र्क होता है, और आप थोड़े सालों के बाद में अगर उसका उनका वापस से दूसरा फिल्म देखते हो तो आपको पता चलता है कि अरे वाह, कितना उनकी एक्टिंग कितनी नेचुरल हो गई है, उनकी एक्टिंग में निखार आ गया है। और देखिए, ऐसा ही होता है कि प्रियंका चोपड़ा की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो जहाँ पर भी जाती है, जहाँ पर भी उनकी एंट्री होती है, तो नोटिस करे बगैर कोई रह ही नहीं सकता है, क्योंकि जो एंट्री उनकी होती है वो बड़ी ज़ोरदार होती है।

क्या बात है, लगती भी इतनी प्यारी है वो। देखिए ऐसे ही तो वो टैलेंट के बगैर इतनी ऊपर तक ऊंचाई तक वो नहीं आ सकती है। उनमें बहुत टैलेंट भरी हुई है और वो बहुत ही डेडिकेशन के साथ जो भी रोल करती है वो अपना 100% उसमें देती है। और यही तो सक्सेस होने के पीछे का एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि एक रीज़न है कि आप जितना जितना भी काम करो उसमें आप अपना 100% दीजिए, और फिर तो आपकी जो शोहरत है, आपकी जो इज्जत है, आपकी जो टैलेंट है, आप में जो भी अच्छाई है वो दुनिया के सामने आकर ही रहती है। और देखिए आपने जैसे हमारे प्रोग्राम आप जो सुनते हो और आप हमें सराह देते हो कि नहीं आपको अच्छा लग रहा है यह प्रोग्राम, तो थैंक यू सो मच, आप इतने चाव से हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। और जी हाँ, मैं और भी आगे चल के आगे हमारे प्रोग्राम में काफ़ी ऐसे अच्छे भी गाने आने वाले हैं। देखिए मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे ये जो संगीतमाला होता है उसमें सारे एज ग्रुप के लोग एंजॉय कर सके, तो आगे चलकर मैं बहुत ही एक हमारे सुपरस्टार हैं उनके भी गाने चलाने वाली हूँ। तो अभी जो मैं गाना सुनाने वाली हूँ वो एक बर्थडे रिक्वेस्ट है। राज जी का जब कल बर्थडे था तो उनके फैमिली वाले उनके लिए उनकी पसंद का एक गाना प्ले करना चाहते हैं। दबंग फिल्म का गाना है दगा बाजरे। तो राज जी आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, और आप ही के परिवार वालों की तरफ से आप ही के लिए ये आपकी पसंद का

दगाबाज रे, बहुत ही अच्छा गाना था और लगता है राज जी आप दगाबाज हैं, आपके नैना आपके लिए, वो आपके फैमिली वाले कह रहे हैं या आपके ऐसे दगाबाज नैना है, वो तो आपके वाइफ को ही पता होगा। हमारे सब की तरफ से राज जी आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, और आप ज़िंदगी में आप ही क्यों, जिनका भी बर्थडे हो उनको हमारी तरफ से हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि हमेशा ज़िंदगी में ज़रूरी है कि आप एकदम शांत रहिए। और ज़िंदगी में है ना अप एंड डाउन सबके आते हैं। वैसे प्रियंका चोपड़ा का भी ऐसा फेज़ आया था कि शुरू शुरू में तो वो जो भी फिल्में आती गई वो लेती गई ठीक है, तब तक उनको मतलब चॉइस कुछ नहीं था, क्योंकि देखिए जब शुरुआत करते हैं हमारे शुरुआती के दिन में ऐसा ही होता है कि आपने एक फ़िल्म की तो दूसरी फिल्म की जो भी ऑफ़र आती है, वैसे प्रियंका चोपड़ा ने फिल्मों को लेती गई। और बाद में राकेश रोशन की फ़िल्म आई क्रिश, और वो फिल्म में पहले तो अमृता राव को लेने वाले थे, लेकिन उन्होंने शूटिंग भी शुरू कर दी थी ऋतिक रोशन और अमृता राव के, थोड़े सीन भी शूट हो गए थे लेकिन जो केमिस्ट्री बननी चाहिए वो इतनी बन नहीं रही थी, और फिर उन्होंने ली राकेश रोशन जी ने प्रियंका चोपड़ा को इसमें रिप्लेस किया था। और ऋतिक रोशन तब तो टॉप के हीरो थे, लेकिन इसमें जो प्रियंका चोपड़ा ने भी काम किया है वो काबिले तारीफ है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ में उन्होंने इस फिल्म में काम किया था। तो चलिए सुनते हैं, इसी फिल्म का एक बेहद ही प्यारा गाना है

वाह, कितनी बेहद सुरीली आवाज़ उदित नारायण और श्रेया घोषाल की. श्रेया घोषाल और उदित नारायण दोनों की आवाज़ इतनी सुरीली है कि बस चाहे कि आप गाने उनके सुनते ही जाओ. ये मुझे ज़्यादा पसंद है उनके गाने. और श्रेया घोषाल तो बस मैं कहती हूँ उनकी आवाज़ में तो जादू है कि वो भी देखिए बड़ी बचपन से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और सिंगिंग में उनको बेहद दिलचस्पी थी. और देखिए आज वो उस मुकाम पर पहुंच गई है कि बस आप उनके गाने सुनते रहो. इतने सारे अच्छे अच्छे सॉन्ग्स उन्होंने हमें दिए हुए हैं. और देखिए सबकी लाइफ में मैंने जैसे कहा कि ऐसे ऐसे फेज़ आते हैं कि आप काम तो करते हो लेकिन आपको उतनी नेम फेम नहीं मिलती है. प्रियंका चोपड़ा को सब लोग देखिए जैसे ब्यूटी पेंजेंट थी, वो मिस वर्ल्ड बन चुकी थी, तो वो सब लोग उनको जो रोल दे रहे थे वो ऐसे दिखा, मतलब उनकी ब्यूटी को देखकर दे रहे थे कि बस एक फिल्मों में हीरोइन की ज़रूरत होती है तो चलो इसको ले लेते हैं क्योंकि ये दिखने में बड़ी सुंदर है और या लंबी है और उनकी पर्सनैलिटी अच्छी है. लेकिन जो एक्टिंग कहते हैं कि कोई उनकी एक्टिंग स्किल और उनको ऐसे कोई मिला नहीं था ऐसा रोल कि जिसमें वो अपनी एक्टिंग को दिखा सके. तो फिर मधुर भंडारकर की फिल्म आई फैशन और वो फिल्म की स्टोरी ऐसी थी कि जो जो नेम ऑफ फेम जो मॉडलिंग की लाइफ हमें दिखाई दे रही है कि मॉडल्स कितनी कितनी उनकी उनके पास कितना फेम है लेकिन उनकी जो लाइफ के ऊपर उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है, उनकी लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, कितने डिप्रेशन से वो गुजरती है, तो वो जो इस फिल्म में दिखाया गया है. तो ये फिल्म के जो एक बहुत ही सुरीला प्यारा गाना है वो गाना मर जावा, वो मुंबई से पुष्पा जी सुनना चाहती हैं. तो पुष्पा जी की पसंद पे सुनते हैं फैशन फिल्म का ये गाना.

ये फिल्म इतनी सक्सेसफुल हुई थी और इसमें जो कंगना रनौत है वो भी उस समय पर उसी मोड़ से गुजर रही थी कि उनकी जो उनका जो ग्राफ था फिल्मों का वो गिरता चला जा रहा था। तो उनको जब मधुर भंडारकर ने इस फिल्म का ये इस फिल्म की जो ऑफ़र की तो देखिए उन्होंने भी पूरी अपनी जान लगा दी थी। और कोई भी फिल्म बनती है तो आप जो रोल करते हो तो उसके पीछे इतनी सारी मेहनत होती है कि उन लोग जाकर उन लोगों जिनका वो रोल प्ले करने वाले होते हैं वो उनकी लाइफ के बारे में जानना ज़रूरी है कि वो किस तरीके से कौन सी परेशानियों से कितना डिप्रेशन उनको हुआ होगा और फिर उन्होंने क्या किया था। तो वो जो रोल होता है वो निभाने के लिए उन लोग काफ़ी सारे महीने लगा देते हैं। तो ये जो रिज़ल्ट हम स्क्रीन पर देखते हैं उसके पीछे सिर्फ हमें दिखाई देता है कि हाँ इन्होंने ये काम किया है, लेकिन उसके पीछे उनकी मेहनत जो है वही है वो इकट्ठा। इट्स नॉट लाइक ओनली वन पर्सन का शो है, इट्स नॉट अ वन मैन शो, ये पूरी टीम वर्क है सबका। उनमें वो स्क्रीन पर जो भी फिल्म बनाते हैं सबका इतना उसमें अहम रोल होता है। और ऑफ कोर्स जो हमारे अदाकार होते हैं जो फिल्मों में स्क्रीन पे हमें दिखाई देते हैं वो तो अपना 100% लगाते ही हैं, क्योंकि तभी हमको वो रोल जो होता है वो लगता है कि एकदम नेचुरल है, जैसे वो रोल खुद जी रहे हैं, उनकी लाइफ में वो शायद वही है और वो हम वो जो एक्टिंग करते हैं वो हम सब स्क्रीन पर देखते हैं। तो अगला जो गाना है मुझे ये गाना बहुत पसंद है तो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। फिल्म आई थी अनजाना अनजानी, तो चलिए सुनते हैं इसी फिल्म का ये जो गाना मैं आपको सुनाना चाहती हूँ।

क्या गाना है, ओह माय गॉड, ये मेरा बेहद ही पसंदीदा गाना है और मुझे पता है मेरे साथ आप लोगों को भी बहुत ही मज़ा आ रहा है आज के ये इतने सारे अच्छे अच्छे प्रियंका चोपड़ा के जो गाने चला रही हूँ मैं। और अगली जो फरमाइश है वो मैं सीधा उसके ऊपर चलती हूँ। फिल्म आई थी दोस्ताना, और ये दोस्ताना फिल्म में अभिषेक बच्चन, जॉन अब्राहम और प्रियंका चोपड़ा थे। तो द मोस्ट स्टाइलिश मूवी ऑफ द ईयर वो उस टाइम की थी, कि बहुत ही अच्छे से सब लोगों ने काम किया था और इसकी स्टोरी भी अलग थी। लेकिन देखिए ये जो फिल्म आई थी उसमें जो गाना था देसी गर्ल, वो गाना सुनना चाहते हैं टोरंटो से प्रीति जी। तो ये फिल्म के गाना रिलीज होने के बाद में प्रियंका चोपड़ा को देसी गर्ल के नाम से भी सब लोग जानने लगे थे। तो चलिए सुनते हैं यही बेहद सुरीला और धमाकेदार गाना देसी गर्ल।

जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा पीसी उर्फ देसी गर्ल सब उसके दीवाने हैं और उनकी टैलेंट के दीवाने हैं और वो काफ़ी कुछ सोसाइटी के लिए भी करती है. वो काफ़ी चैरिटीज़ में वो पार्टिसिपेट हुई हुई हैं और उन्होंने ना कि सिर्फ बॉलीवुड में लेकिन हॉलीवुड में भी उन्होंने अपना एक स्थान जमा दिया है. और मुझे अभी एक मैसेज आया था और प्रिया जी कहती हैं कि भाई आज भूमि पेडनेकर का भी बर्थडे है. जी, अच्छा हुआ आपने हमें कहा. और वो सुनना चाहती हैं, फिल्म आई थी दम लगा के हईशा का, बेहद सुरीला गाना है, मोनाली ठाकुर की आवाज़ में गाया हुआ गाना है. तो चलिए सुनते हैं वही गाना.

वाह, क्या आवाज़ है मोलानी ठाकुर की, कितना प्यारा गाना है। तो जी हाँ, आज जैसे कहा भूमि पेडनेकर का भी बर्थडे है। देखिए वो भी मुंबई में ही बड़ी हुई है, लेकिन उनका भी पैशन था फिल्मों में काम करना। उन्होंने एक्टिंग स्कूल भी ज्वाइन की थी और फिर उन्होंने यशराज फिल्म के साथ वो उसमें असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर का भी उन्होंने काम किया था। और फिर उनको ये फिल्म की ऑफ़र आई थी दम लगाकर हईशा, और इस फिल्म के लिए उन्होंने कितना वेट गेन किया था पता है, पुटोन किया था 30 किलो। जी हाँ, वो 65 kg की थी तो उन्होंने 96 kg तक उन्होंने अपना वज़न बढ़ाया था, ये रोल की डिमांड थी। तो यही है कि फिल्मों में जब भी कोई भी एक्ट करता है तो वो अपने ऊपर बहुत काम करते हैं। मुझे पता है कि मदर इंडिया आई थी, उसमें नरगिस जी ने खुद ने वो हल चलाया था। फिर मुगले आज़म में मधुबाला जी थी, उनको वो लोहे की चेन से जब बांधा था तो वो रियल में लोहे की चेन ही थी। और इसी तरीके से आजकल भी हीरोइन भी अपने ऊपर बहुत काम लेती है। और ये देखिए, खाना खाकर इतना मोटा होना और फिर वापस शेप में आना, वो इतना आसान नहीं है। लेकिन देखिए, आजकल सबको रियलिटी दिखनी चाहिए, उसके लिए उन लोग ये सब करते हैं। और आज हमारे जो बॉलीवुड कहते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री है, उनके जो हमारे जिससे हमने कहा, हम कह सकते हैं कि स्टारडम जो कहते हैं, जिसके साथ सुपरस्टार का जो खिताब आया, वो जिसको कहा गया था, वो हमारे बॉलीवुड के राजेश खन्ना जी, जिनको मैंने कहा पहले सुपरस्टार हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के थे, उनकी आज पुण्यतिथि है। उनका निधन, उनकी डेथ हुई थी 18 जुलाई 2012 को, वो 69 ईयर्स के थे। तो देखिए, ये जो उनका भी स्टारडम था, वो उन्होंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया था। तो आज हम कैसे भूल सकते हैं कि राजेश खन्ना जी को श्रद्धांजलि दिए बगैर। तो चलिए, मैं राजेश खन्ना जी का ही बेहद प्यारा जो गाना है मैं सुनाने वाली हूँ। और मुझे, मैंने जैसे कहा कि मैंने, हमारे काफ़ी लिसनर्स होते हैं जिनको नए गाने इतने सूदिंग नहीं लगते, लेकिन जो पुराने किशोर कुमार जी के गाने हैं उसकी कुछ बात ही अलग है। तो मैं राजेश खन्ना जी को श्रद्धांजलि देते हुए ये गाना प्ले करना चाहती हूँ।

जी हाँ, हमारे राजेश खन्ना जी उर्फ काका जी, फिल्मों में उन्होंने जितना नेम फेम हासिल किया है और उन्होंने जो स्टारडम अच्छे से एंजॉय किया है, जिसको कहते हैं ना कि आज तक इतना स्टारडम किसी और हीरो ने नहीं हासिल किया है, और उनके भी गाने एक से बढ़िया एक, उन्होंने एक साथ कितने सारे हिट फिल्में दी हैं, और गाने के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। और वक्त भी कम है, लेकिन देखिए हमें फरमाइश भी आने लगी है, राजेश खन्ना जी का जिक्र करें और किशोर कुमार जी के गाने हो तो हमें फरमाइश तो आनी ही है। तो हमें एक रिक्वेस्ट आई है, रमेश जी वो सुनना चाहते हैं, फिल्म आई थी नमक हराम, उसका बेहद सुरीला गाना है, रज़ा मुराद और राजेश खन्ना जी के ऊपर पिक्चराइज किया है ये गाना, और गाने के बोल हैं मैं शायर बदनाम। तो चलिए रमेश जी की फरमाइश पर सुनते हैं यही गाना।

मैं शायर बदनाम, बहुत ही प्यारा गाना था। और राजेश खन्ना जी की बात कर रही हूँ तो मुझे हम सब आनंद फिल्म को तो भूल ही नहीं सकते। और यू नो वही फिल्म थी जिनके सारे डायलॉग आप देखोगे ना तो इतने फेमस हुए थे कि बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, आने वाले गम की जो हम बात करें तो आने वाले जो भी दिन होते हैं उनको हम खींच तान के आज की खुशी में लेकर आते हैं। और फिर दूसरा भी एक डायलॉग था कि जब तक जिंदगी, जब तक जिंदा हूँ तब तक मरा नहीं, जब मर गया तो साला मैं ही नहीं, तो डर किस बात का। तो ये इतने सारे सारे जो अच्छे डायलॉग थे वो आनंद फिल्म से थे और उसी का एक गाना मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। और गाने के बोल है, कहीं दूर जब दिन ढल जाएं।

0: नज़र ना आए। देखिए आज का प्रोग्राम कैसे ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। और देखिए ऐसे ही हम हमेशा से आपके एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, आपको अच्छे अच्छे गाने सुनाते हैं। और अब वक्त आ चुका है आपसे टाटा बाय बाय कहने का। और जाते जाते मैं और एक किशोर जी का ही गाना प्ले करने वाली हूँ। और ये कहूँगी कि प्लीज़ आप अपने सेहत का ख्याल रखिए, फैमिली के साथ रहिए और एंजॉय कीजिए जो भी पल आ रहा है उसको। एक एक पल बहुत ज़रूरी है और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन हमें ईश्वर का शुक्रिया अदा करना है, उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। ज़िंदगी में एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ग्रेटिट्यूड का। आप प्रोग्राम सुनिएगा, अगले वक्त फिर अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। और बस हमेशा की तरह टेक केयर, टाटा बाय बाय और सायोनारा।
1: जिंदगी

0: कैसे हैं आप सब? गर्मियों का मजा ले रहे हैं ना आप? इंडिया की याद ताज़ा कर देती है ये टाइम की गर्मी। मुझे पता है आज से 3-4 साल पहले ही शायद पूरे सीजन में एक बार 30+ जाता था, और लास्ट 2 या 3 साल से 30+ तो इजीली जा रहा है, और इस बार की गर्मी 36, 37, 38, ओह माय गॉड। किसी को भी ये लग नहीं रहा कि हम लोग अभी कनाडा में बैठे हैं। अगर बॉम्बे में होती तो मैं शायद ऐसा ही कहती।
1: क्या बोलती तू?

0: सके।
1: लगता है गर्मी के चक्कर में मैं आप सबको विश करना ही भूल गई हूँ। पर जिसका भी बर्थडे था या आज है या आने वाला है, उन सब के लिए मैं एक गाना प्ले कर ही देती हूँ। चलिए सुनते हैं, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। फिल्म का नाम है सुजाता, एस डी बर्मन जी का म्यूजिक और आवाज़ आशा भोसले जी की।

अस्सलाम वालेकुम सास कार्टून, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट उमर। और हमारा आज का प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम होने वाला है, इसलिए कि काफ़ी दिन के बाद एक बहुत खूबसूरत चीज़ों की कलेक्शन मैं आज प्ले करूंगा। और इसलिए आज सिर्फ हम फोकस सिर्फ रेडियो शो पे रखेंगे और हम थोड़ा सा रिवील करेंगे वो हमारा काइट फेस्टिवल जो हुआ था, उस काइट फेस्टिवल की खुशियाँ, रानाइयाँ और जो हमारी उसकी थ्रोबैक थी, जो हमारा लोगों का फीडबैक था वो कितना खूबसूरत आया और उसकी रीच हमारी कितनी थी, उस पर बात करेंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ों में बात करेंगे, लेकिन आज हम पहले सबको विश कर देते हैं जिन जिन की आज बर्थडेज हैं, जो लोग इन खुशियों में शामिल हैं। इससे ज़्यादा उन लोगों के लिए जो हमारे दोस्त अहबाब में जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शफा दे और उनके लिए हमारी नेक तमन्नाएं और जो हैं दुआएं हमारी तरफ से शामिल हैं। इसके अलावा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है आप सबका साथ रहता है और इस मौसम का क्या कहना है, जो मौसम जो है कितने अरसे बाद हमें इस जून जुलाई मिला है, लेकिन कुछ जगहों पे इस मौसम के हवाले से जब भी आती हैं गर्मियां आती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आने वाले दिन में एनवायरमेंटल कंसर्न्स बताती हैं और एनवायरमेंटल इश्यूज बताती हैं। उस पे हम इस पे बात करेंगे कि आया कैसे होना चाहिए, इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इन चीज़ों की और खूबसूरतियाँ कैसे बरकरार रखी जा सकती हैं, कनाडा अपनी चीज़ों को कैसे प्रिजर्व कर सकता है, इसके ऊपर रिसर्च पे बात करेंगे। और जो है एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है, लेकिन पहले हम सिर्फ उनकी चीज़ों पे फोकस करेंगे कि अभी क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हम एक प्रोग्राम करेंगे, हमारे कुछ एक्सपर्ट्स आएंगे, हम उस पर बात करेंगे कि इन इन्वायरमेंटल कंसर्न को हम कैसे जो है चीज़ों को रोक सकते हैं और इन चीज़ों को कैसे बढ़ा सकते हैं। मेरे पास एक बहुत खूबसूरत हमदे बारी ताला है, हम उससे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम की जो खुशियां हैं उनको दुबला करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं आज पिकनिक पे मौजूद हैं, हम उनका भी एक व्यू पॉइंट लेंगे कि आज की पिकनिक जो है वो इतने खूबसूरत मौसम में कैसे होने वाली है और उसकी जो है खूबसूरती जो है वो कैसे बरकरार रहने वाली है। और कुछ चीज़ों का ज़िंदा रहना बड़ा ज़रूरी है, उसमें से एक रेडियो प्रोग्राम है जिसकी एक अपनी एक खसूसियत है और उसकी वजह यह है कि ये ट्रेडिशंस हैं।

जो टीवी से पहले और उससे पहले जो है आपको एक खूबसूरत एहसास दिलाती है कि आपने इन चीज़ों में हिस्सा लिया है। आने वाले दिनों में हम और बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, उसका थोड़ा सा जिक्र करेंगे, लेकिन हम वो अगले प्रोग्राम में उस चीज़ों को उन चीज़ों को ज़्यादा जिक्र करेंगे। लेकिन अभी हम एक नूर अफजल हमद है आतिफ असलम और आबदा परवीन की आवाज़ में, आबदा परवीन का जिक्र जो है वो सूफीज़म में बहुत बड़ा नाम है। इसके लिए हम एक अलग से प्रोग्राम करेंगे, सूफीज़म के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, लेकिन अभी हम हमद बारी ताला सुनते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं।

वेलकम टू आवर चैनल. और सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम फेसबुक लाइव पे भी मौजूद हैं. अगर आपके कोई कंसर्न्स हैं, आप कोई पैगाम देना चाहते हैं, कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप फेसबुक लाइव पे भी कर सकते हैं. पीसीसी के पेज के ऊपर फेसबुक को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं. और इसके अलावा हमारी जो है गाने की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं.

इस गानों की आवाज़ में एक जो अभी कलाम आया कि उत्तर देखा पश्चिम देखा, इसका मकसद सिर्फ सुनाने का ये है कि जो मैं बात अपनी को मुकम्मल करना चाहूँगा कभी इसमें इस शेर में सोचें कि ईस्ट और वेस्ट हम जब देखते हैं तो उन परेशानियों का ज़िक्र भी होता है कि जो जंगलात में आग लगी है। अब आज की कोई खबर थी कि बहुत अल्लाह ताला का करम है कि सास्कट उनको अल्लाह ताला ने महफूज रखा, जो टोर्नेडोस जो आए वो भी एक एनवायरमेंटल कंसर्न है, उनकी क्या वजूहत हैं, उनके ऊपर क्या मसाइल हैं, उसका भी जिक्र करेंगे। मैनिटोबा में जो सैलाब आए हैं आज अल्लाह ताला कह रखे कि टोरंटो में भी एक टोर्नेडो का जो है जिसे हम भंवरा भी कहते थे और जो है गर्म हवा का भगोला उसे अपनी ज़बान में कहा जाता था, उसका एक ख़तरा है। और अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और हमें अपना अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे।

0: ये थे अमजद साबरी साहब और राहत फतेह अली खान. एक खूबसूरत आवाज़ और एक खूबसूरत मिजाज दोनों का, जिसमें हमें हमेशा एहसास होता है कि वो एक खूबसूरत इम्तिजाज है दोनों का. राहत अली खान में हमें नुसरत अली खान की आवाज़ नज़र आती है, और अमजद साबरी साहब मरहूम में साबरी ब्रदर्स की एक खुशबू जो है वो समझ आती है. कवालियों का जो सिलसिला है वो आज के दौर में अब भी अमजद जो है, जो साबरी ब्रदर्स हैं, उन्होंने हमेशा इनको कायम व दायम रखा. इनके जो आज की ज़बान में कहूँ तो कज़न्स जो हैं, और जो सब खूबसूरत मिजाज रखने वाले लोग हैं. और ये टफ़ इसलिए है कि आज के दौर में जबकि जैज़ म्यूज़िक और इन चीज़ों का मिजाज आता है, तो सूफीज़म और कवाली को ज़िंदा रखना, ये शायद मेरा ख़्याल है कि मैं अगर ज़्यादा क्रेडिट दूँ तो ये सब कॉन्टिनेंट में जो है सबका एक फोटे है. और आज भी लोग दरबारों में जाते हैं और उसको ज़िंदा रखते हैं. लेकिन इनको ज़िंदा रखने में आज के कुछ लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, उन घरानों का बहुत बड़ा हाथ है जिन्होंने इसको ज़िंदा रखा है. मैं अपने दौर के हिसाब से नुसरत फ़तेह अली ख़ान को इसका बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा, क्योंकि वो इसको बहुत आगे तक उसे लेके गए थे. और जब लोगों को एहसास नहीं था कि कवाली का मिजाज क्या है और कवाली को कैसे चेंज किया जा सकता है, थोड़ी सी उसमें नए रंग के जोश भी डाले गए जिससे लोग कवाली की तरफ आए. और आज भी कवाली की इस पीढ़ी को ज़िंदा रखा हुआ है. मैं एक और फरीद अयाज साहब की आवाज़ में जो है मौलाना सल्ली वसल्लम वो सुनवाते हैं. शायद उस पर प्रोग्राम का इख्तिताम भी हो जाएगा, लेकिन हमारा ये सिलसिला अभी जारी रहेगा. इसकी कुछ चीज़ों को बयान करना बहुत ज़रूरी है कि कवाली को कहाँ तक लेके जाना है. हम कवाली के मैं ज़िक्र मैं क्यों कर रहा हूँ, और इसको हम अपने फोक में भी जो है वो कैसे शामिल हुआ, इसके ऊपर हम एक हिस्ट्री पे एक पूरा प्रोग्राम करेंगे. लेकिन अभी हम सुनते हैं फरीद अयाज साहब की आवाज़ में.
1: सर पे अपने लहन की हो

इसका मिजाज मैंने आज इस सोच के रखा था कि जो हालात और रब ताला की कुदरत जो है वो हमें इसलिए याद रखनी चाहिए कि जो हमारे गिर्दो नवा में हो रहा है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और जब तक हम उन चीज़ों को नहीं सोचते या उनका ख्याल नहीं करते तो ज़िंदगी का मकसद नहीं रहता।

0: बहुत लोगों का ख्याल है कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान का मैंने बहुत जिक्र किया कवाली के हवाले से, लेकिन उनको शामिल नहीं किया। नुसरत फ़तेह अली ख़ान को शामिल करने के लिए पूरा प्रोग्राम चाहिए, शायद कई प्रोग्राम चाहिए, तो इसलिए उनका जिक्र जब आएगा तो उनके हवाले से एक पूरा प्रोग्राम करेंगे हम। और उनकी अभी जो वफ़ात का दिन है वो शायद नज़दीक आ रहा है, अगले महीने है, लेकिन जो उनकी कंट्रीब्यूशन है कवाली के हवाले से उसको हम कभी नहीं भुला सकते। हम उसके लिए एक अलग प्रोग्राम करेंगे, लेकिन ये सिलसिला कैसा है फरीद साबरी साहब का।
1: तू हमारी दुआओं को कबूल फरमा, ये तरकीब।